सुख होवत नरति। वाहिगुरु साहिब जी, आई पापन पूतना दुही थनी वेहो लाए वहेली, आए बैठी परिवार विच नेहो लाए नवहान नवेली, कुछड़ लाए गोविंद राए कर चेटक चतुरंग महली।

जाने। चतर चक्रवर्ती चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

त्रिभर्गं त्रिबाधेय अगंजेय अगाधे शुभं सर्वभाग्येषु सर्वा अनुराग्य त्रिभुत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है। किनर्कं परनाश है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विपुगत स्वरूप है, परजुगत अनूप है।